ष्टेयाता तवाचोतासोवाने हकेवेनष्टेयाता न एङ्यताशोवाने आ याय आ याय अह हे मंग मंग कोतोरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कोतोरित अमम नामे पोषे नोनोवा ओया शेक्या